हकरो माइकरू हाई ते महिंगाए हकरो हकरो माइते अतुआ मतो हुईने में मतो किरारो किरपनुई तहोका इंगाए।